0: ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला दुप्तारु सुख रोग पे आजा सो काम न होई
1: तुम करता करना मैं ना ही जाहो करी न होए
0: बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई रखिया रहाओ
1: जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पूरे रहा
0: तुम सच्चा साहिब से छुआ जिनकी तीस हो पार पाया
1: कहो नानक रहते की आपाता जो किस करना सो कर रहा
0: सोदर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर तेरा कहया सो कर कहया जित बह सर्व संभाले
1: बजे तेरे नाद अनेक असंखा किते तेरे वावन हारे
0: किते तेरे राग प्री से कहया किते तेरे गावन हारे
1: गावन तुन पवन पानी बह संतर गावे राजा धर्म द्वारे
0: गावन तुनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे
1: गावन तुनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे
0: गावन तुनो इंद्र

0: कवन तुनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मच प्याले
1: कवन तुनो रतन पाए तेरे अरसर तीर्थ माले
0: गावन तुनो जोर महाबल सूरा गावन तुतनो खानी चारे
1: गावन तुनो खंड मंडो प्रबंधा कर कर रखे तेरे तारे
0: सही तुतनो गावन गावन जो तुत पावन ते तेरे पाद ब्रशाले
1: होर किते तुनो गावन समय चितना आओ नानक के अभी चारे
0: सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई
1: हैपी हो सी जाए न जसी रचना जल रचाई
0: रंगी रंगी भरती कर कर जनसी माया जन उपाई
1: कर कर देखे किता अपना ज्योतिष दी वड्याई
0: ज्योतिष पावै सोई कार सी फिर हुक्म न करना जाई
1: सो पासा हो सहा पासा है नानक रहन जाई
0: आसा महला पहला सुन वड़ा आख्या सब को

0: जिन के विड़ पाग विड़े रे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास
1: हर हर नाम मिले तृप्ता सहल संगत को प्रकाश
0: जिन हर हर हर रास नाम न पाया ते पागहीन जम पास
1: जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिक जीव त्रिक जीवास
0: जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तरो मस्तक लिखिया खास
1: नानक पान सत्संगत जिथा रस पाया मिल जन नानक नाम प्रकाश
0: राग गुजरी महला पंजवा काहिरे मन चितवै उदम जा आहर हर जियो परिया।

0: लोग सत विनता को नकिस की तरिया
1: ठाकुर का है मन भव करिया
0: उड़े उड़ आवे सको सात पछ है बचरे शरिया
1: कौन खिलावे कवन चुकावे मन में सरमन करिया
0: सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर काल तल तरिया रागा सा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा
1: हरा
0: पे ठाकर हर अपे सेवक जी के नाम

वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नव सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन।

मन करके, क्योंकि मन सुत्ता पिया है ना, मन माया के प्रभाव के हेठ सौ जाता है। वैसे तो सारिया इंद्रियां सुतियां हुई हैं,

कोई जागदा इस ग्रह भाव की शरीर दे विच एक खाना ऐसा है जिहड़ा जागदा पर ओहदे वल साडी तवज्जो नहीं हुंदी ध्यान नहीं हुंदा।

रात कीर्तन च जागना शब्द असी पढ़ते पे सिन्नी भिन्नी रह लड़ी है चमकन चमकन तारी संगत च हुक्म होया कि यह शब्द पढ़ना है अज मैं क्या धन्यवाद जी मेरे जरूर पढ़ांगे तो बिचों बिचों विचार बनते जा रहे हैं जिस तरह गुरु सच्चे पातशाह जी प्रेर रहे ने सानू पिन्नी पिन्नी रैलड़ी है चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे राम प्यारे जिहड़े ने ओ सदा ही जागते केवल रात नूं नहीं जागते क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिहड़ी पंक्ति लिखते पए ने पिन्नी रैलड़ी है चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे सदा जागे इत्थे केवल ते केवल रात दा जिक्र नहीं कीता सतगुरु जी कहिंदे राम प्यारे सदा जागे वह दिने भी जागते ने वह सौंदे भी वाह वाह करते ने ते सवेरे भी वाह वाह करते उन्हां दे अंदर वह तार जिहड़ी है वह प्रेम की इश्क की लगी रहिंदी है वाहिगुरु ने नाल जिहदा करी प्रेम बन गया ना वो फिर कोई उसनू हटा नहीं सकता भावें लोग जिन्ना मर्जी बखौल कर भगत कहने तेरी भगत ना छोड़ो भावें लोग हसे मैं जिन्ना मर्जी मजाक करना करो मैं थोड़े तो हसदा तुम मेरे ते हसते गलते कोई तुसी मेरे जो अवस्था प्रेम रूप अवस्था भावना वाली अवस्था से हसते हो मैं थोड़ी मूर्खता से हसदा इन्ना ही फर्क हसदा मैं भी थोड़े ते तो मैं तेरी भगत ना छोड़ो भावें लोग हसें चरण कमल मेरे हीर है बस है तो सौंदे भी वाओ वाओ उचरे उठते भी वाओ वाओ करे वाह वाह करते ने वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु उन्होंने अंदर ये तार जी झनकार जी ये चलती रहती है केवल तो केवल रात नूं नहीं क्योंकि गुरु ने अगे पंक्ति च लिखा है अपनी गल नूं आपे खंडन कर रहे हैं

लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औख दिया एका लिव लाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पही प्रभ पहे सहाई। सलोक जह साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तून है छुट है, निकट न जाई हो दूत। सलोक महला पंजवा, मन मह चितवो चितवनी, उद्यम करो उठनीत, हर कीर्तन का

सिवरिहो सृजनहारो, तुम गाहो मेरे निर्भो का सोहिला, हवारी जित सोहिला, सदा सुख होए रहाओ, नित नित जेड़े समाले।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

भगत जना की बरतन नाम, संत जना गै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर के नाम दरे जन कोट, हर जस गर्त सन दिन रात, हर हर औखद साध गमात, हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन किन्नो दान, मंदर रंग रते रंग एक नानक जन कै बरत बबेका, हर का नाम जन कौ मुगत जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिपित भुगत, हर गा नाम जन गा रूप रंग हर नाम, जपत का परे ना भंग, हर गा नाम जन की वडियाई, हर

हर हर जन के मालक जीना, हर धन जन को आभ्रव दीना, हर हर जन के ओट सताणी, हर प्रताप जन अवरना जानी, ओत पोजन हर सराते, सुन समाध नाम रस बाते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं शपै।

राष्ट्रपति दस वस्तु ले पाछे पावे एक बस्त कान भी खोट गवावे एक पीना दे दस भी हर ले दो मूडा कहो कहा करे जिस ठाकुर सियो नाही चारा तागो की जय साध नमस्कारा जाके मन लागा बना मीठा सर्व सुख ताहू मन भुठा जजन बना हुकम बनाया सर्व थोक नानक दिन पाया गंध शाप नी दे रास खात पीत वरते आनंद उलास अपनी अमान कच बहुर शाली अज्ञानी मन रोज करे अपनी प्रतीता भी खोवे बहुर उसका विश्वास न हो वह जिसकी बस आगे राखे प्रभु की आज्ञा मान है मत है उसने चौगुन कराए निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया गे हेत सरबर होवत जान अनेत बिरखी छाया सुरंग लावे ओ बिनसे मन पछतावे जो दिसे सो चालन हाल लपट रहे होते अंध अंधार बटाऊ से जो लावे ने दागु हाथ न आवे गेहे मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आवलय लाई मिथ्या तन धन गुटम सवाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राव जो मन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती आसो वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया बेखस्ता मिथ्या त्रो मो अभिमान मिथ्या पुष्पर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने मिथ्या पर दर्भ को हिरे

राम स्नेही जय प्रसाद रे उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद रे सगले शिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु थाकै जय प्रसाद तुझको ना बहुचे मन सा सा सिमरो प्रभु उचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ता की भगत करे हे जय प्रसाद आ भूखन पह रीजै मन तिमरत क्यों आलस कीजै जय प्रसाद अशुभहस्त सवारी मंत से प्रभु को कबू ना बेसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राग ब्रोए प्रभु अपने मना जन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सा तिसे त्याई तिसे त्याय जो एक अलख है ईहा ऊहा नानक तेरी रखा है जय प्रसाद करे पुन बहुदान मना आठ पैर करत सका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सोभ्रभ सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सोभ्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पतरा है गुर प्रसाद नानक जस कहै जय प्रसाद सुने करण नाद जय प्रसाद वेखे बिस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना

गुरुंगाव साधु संग न मंते बिसरा साधु संग सर पर निस्तराय साधु संग लगे ब्रह्म मीठा साधु कह संकट गढ़ डीठा साधु संग भया गया गारी साधु संगत भई हमारी साधु संग मिटे सब रोग नानक साधु बेटे संजोग।

ब्रह्मज्ञानी कह रहा है अभिमान, ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने सबते नीचा, ब्रह्मज्ञानी से जन भय नान विजन प्रभया वगरे, ब्रह्मज्ञानी सकल की रीनाथ मरस ब्रह्मज्ञानी चीना, ब्रह्मज्ञानी की सब परमया, ब्रह्मज्ञानी दे कछ बुरा ना भया, ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी बंधन दे मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी एक प्रयास, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्मज्ञानी परोपकारो माह, ब्रह्मज्ञानी का नाही तंदा, ब्रह्मज्ञानी तावत बंधा, ब्रह्मज्ञानी कवे स्वपरा, ब्रह्मज्ञानी सफल फला, ब्रह्मज्ञानी संग सकल उदार नानक, ब्रह्मज्ञानी जप सकल संसार, ब्रह्मज्ञानी का एक रंग, ब्रह्मज्ञानी का बस प्रभसंग, ब्रह्मज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी का नाम प्रवार, ब्रह्मज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्मज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत,

नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ब्रहाथ।

देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहवरना में जपे कऊ नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, सास संग पावे जन को ए कर कृपा अंतर उतारे, पास प्रेत मुक्त पात्र को तारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कि तेना पाइये, धर्म नानक तिस मिलाय, जलखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दाद संतन भाए दिन भाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगे परवान,

प्रभाव है सुई फनहोग पसरिया भय अंतरंग लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करहे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बाविद अनक प्रकार अष्टपति कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बान भ्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कब का विचारे कई कोट नवतन नाम त्यावे नानक करते कांत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभेगात्म ने कोर कई कोट पर दर्भ को हिरे कई कोट पर दुख न करहे कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश परमाहे जिद्दित लाभो तित्तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व उपाय कई कोट पाथर बृख न बजाए कई कोट पवन बाणी वह संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र शेर शतर सगल समग्री अपने सूतारे नानक जिस जिस भावे तिस्तित निस्तार कई कोट राजस्थान सात कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त्र कई कोट की रतन समंत कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाच सबते नेरा सबूते दूर नानका लिप थरिया भरपूर कई कोट भा ताल के वासी कई कोट नरक सुरग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट भाव जूनी फिरे

राष्ट्रपति संत गए दुख ने यार जा कटाया संत गए दुख न जम तय नहीं छुटाया संत गए दुख न सुख सब जाए संत गए दुख नर्क में पाए संत गए दुख न मत होए मलीन संत गए दुख न सोबा तेहीन।

संतन गए दुखन सर्प जोन पाए संत गए दुखन तृगत जोन कर माए संतन गए दुखन तृष्णा मैं जलाय संत गए दुखन सब को शलाय संत गए दुखन ते सब जाए संत गए दुखन नीच नीच आए संत दुखी गाथा को ना हे नानक संत पावे था वे भिगत पाए संत गा निंदक मात ताई संत गा निंदक इंट गन्ना पाई संत गा निंदक महात्यारा संत गा निंदक परमेश्वर मारा संत गा निंदक राज ते हेन संत का नंदक दुखी हार दीन संत के नंदक को सर्व रोग संत के नंदक को सदा बिजोग संत के निंदा दोख मैं दोख नानक संत भावित उसका भी हो मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी मा अहंकारी संत का दुखी सदा भिखारी संत का दुखी जन्म मरा संत की दुख ना सुख ते ठर संत गए दुखी को नाही ठाहु नानक संत नानक संत भावे तलय मिलाए संत गा दुखी अद बीते टूटा है संत गा दुखी कते काज ना पहुंचाए संत गए दुखी को ध्यान भरमाइए संत गा दुखी उजड़ पाइए संत गा दुखी अंदर दे थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत गए दुखी की जड़ किश नाहे आपन भी जापे ही खाहे संत गए दुखी को अपना राखन हार नानक संत भावे तलय उबार संत गा दुखी इं बिल लाए जल भी हूं मछली तड़फड़ाए संत गा दुखी भुखा नहीं राजे जो भाव इंद्र नहीं तरपै संत गा दुखी छुटे अकेला जो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संत गा दुखी धर्म तेरे संत गा दुखी सद मिथ्या कहत कृतनंदका तुरही पया नानक जो तिस भावे सोई थिया संत गा दुखी बिगडू पे जाए संत गए दुखी को दरगाह मिले सजाए संत गा दुखी सदा सहकाइए संत गा दुखी ना मरे ना जीवाइए संत गए दुखी की पुजे ना आशा संत गा दुखी उठ चले निराशा संत गा दुख ना त्रष्टा कोय जैसा भाव है तैसा कोई होए पया कीर्तना मेटा कोय नानक जाने सच्चा सोई सब गढ़ तिस कियो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात से त्यावो सास गिरा सब कुछ वरत तिसका किया जैसा करे तैसा गोथिया थिया

स्वप्रसन्न अष्टपदे अविनाशी ब्रह्म न मै राघवानु कीतो प्रीत्या तस्य परा नाहि कुछ कोय सर्व निरंतर एक सोय आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शांद सा तेरे की चरणी पाऊ नानक मन एहन राव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई हो घरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने होर अंधरू मंगल सत जाके सर्व थोक सुनिए घर ताके राज मैं राजोग मैं जोगी था मैं तबिसर ग्रस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस प्रगा करे अंत न पाया जाकी लीला की मत नाहे सकल देव हारे बगाहे पिता का जन्म के जाने भूत सकल ब्रोही अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जनदास नाम ध्यावे से ते गुण मैं जागो परमाए जन्म मरै फिर आवा जाए ऊच नीच

सर्व कल्याण सुख निधनाम बुढ़ जात भाई विश्राम सकल दुखा उदनास नानक नाम जबो गंतास उपजी प्रीत प्रेम रचाओ मंत्र अंतर यही स्वाव नेत्रो बेग दर सुखोय मन भिगसे सात चरण तोये।

अनाथनाथ गोविंद गोपाल सर्वकृत अहंकर्त प्रतपाल आत पुर कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सोय पनीत भगत पाए लावे मन ही तम निर्गुण यार नीच अजान नानु तुमरी सरगुण पुरख भगवान सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए एक निम खरके गुण गाय अनगराज भोग बडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भलि सुकरणी शोभा तन मंदिर दसे पूर्ण गुरमंत्र

और अष्टपति आप कथे आप सुनने हारा पेका विस्तार जात सभाविता सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाये तुम ते भिन्न नहीं कुछ होया अपन सो सब जगत परोए जागो प्रभु जी आप जाय सतनाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी यंत्र सब था के हा दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तुझ कोई न मारे सो मुआ जिस मनो में

जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित बहो नारायण एके गुरु पजागे रंग अने गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमरे सिमरे नाम बारंबार नानक जी का इहादार उत्तम सलोक साध के

प्रणाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध सा संग मिटे संत कृपाते जमते छुटे जाके मस्त कर्म रबाए साध सर नानक ते आए।

करे। सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया धरत तबले आकाश, सुनया दीप लो अपाताल, सुनया पोहे न सकै काल, नानक भगता सदा विंगास, सुनया दुख पाप का नास, सुनया ईसर ब्रह्मा इंद, सुनया मुख साला हनुमंद, सुनया जोग जुगत तन भेद, सुनया सात सिमरत वेद, नानक भगता सदा विंगास, सुनया दुख पाप का नास।

पर कुट जाय। मन माग न चाले पंथ, मन धर्म से ती सन बंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोए। मन पावे मोह द्वार, मन परवार सादार। मन तारे तारे गुरसिख, मन नानक पवे न पिख। ऐसा नाम निरंजन होए, देखो मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान। पंचे सुह है दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान। जेको कह करे विचार, करते कह करने नाही सोमार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। देखो बुझे हो वै सचार, तबले ऊपर के तापार।

निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिरपार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बान अखरा सिर संजोग बखान जिन एह लिखे ते

अमोल गुण अमोल व्यापार, अमोल व्यापारी अमोल पंडहर, अमोल आवे अमोल लै जाहे, अमोल पाए अमोला समाहे, अमोल धर्म अमोल दीवान, अमोल तुल अमोल प्रवान।

एक दो जी बो लाख हो है लाख हो वह लाख वीस लाख लाख गेड़ा आखिय है एक नाम जगदीश ए दराहे पत पवड़िया चढ़िए हुए अकीस सुन गला आकाश की टाया रीस नानक नदरी पाइये कूड़ी कूड़े ठीस आखन जोर च पैन जोर जोर न मंगन देना जोर

के अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पावे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जा पै जाए धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड काख हो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते भरमे कारत घड़िये रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नयंत

है अपीत है अबाह है अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समभवति निदाने नमो देव देवे पेखी पेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे

तेजर प्रम्यता सतगुरु सब सुन आया। सतगुरु जे अवरदा तक को नहीं सब सुनियो लोग सब आया। सतगुरु मिली सच पाया जिन विचो आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया, जिन सचो सच बुझाया।

0: प्राण प्रिय शरीर का एक रक्त कृतवा हो। जुग जुग फिर बताइए ज्ञानी बुझता है सतजु रसन तो
1: चलो महला पहला दुख दारू सगरों पया जा सुखतावना होई तू करता करना मैं ना ही जा हो करी ना हो
0: बलहारी को तो फसिया तेरा।

सोचे अगे रखियो कोई न पुठियो जाए सोचा हुए कि जगे लगा पड़सलो कोथी जाई सटिया किसे लगा धूप आन देवता पानी देवता बैसंत्र देवता लू भजवा पाया किरतता हुआ पाक पवित्र पापी से उतन गड़िया थोका पइया तित जित।

0: पांडव चल राहो। पांडवुआ पांडव पालिए पांडव होवे बंधा, सो क्यों मंदा किए जित जमे राजा।
1: पांडव ही पांडव पिते पांडे बाज न कोए, नानक पांडे बारा एक को सच्चा सोए। जित मुख सदा सलाई है पागर दी चा, नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार।

0: कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे
1: नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आगुण दे
0: तेहा कोई न सूझई जे तस गुण कोई करे
1: सुनिया सिद्ध पीर सुनात
0: सुनिए तरत धवल आकाश
1: सुनिए दीप लो पाताल
0: सुनिए पोहे न सकै का।

0: नानक उत्तम नीच न कोए
1: राती रुती तिथि वार
0: पवन पानी अग्नि पाताल
1: जिस विच धरती थाप रखी धर्मसार
0: जिस विच जीए जगत के रंग
1: जिनके नाम अनेक अनंत
0: कर्मी कर्मी होए विचार
1: सच्चा आप सच्चा दरबार
0: तिथै सोहन पंच प्रवान
1: नजर करम पावे निशान
0: कच पकाई औथै पाए
1: नानक क्या जापे जाए
0: धर्म खंड का एहो धर्म
1: ज्ञान खंड का आखो कर्म
0: केते पवन पानी वैसंतर केते कान महेश
1: केते ब्रह्म कार्तिकीय रूप रंग के वेश
0: केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश
1: केते इंद्र चंद सूर केते केते मंडल देश
0: केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते।

0: निर्नायक
1: है, कलकायक है,
0: विश्वंपुर है, करुणालया है,
1: निर्नायक है, सब पायक है,
0: भवभंजन है, अर्गंजन है,
1: जपतापन है, जप जापन

0: स्वरूपे सदा अंग संगे वाहे जी का
1: श्री भगवान की पाए कृपा होते एक बिन एक के
2: माते मतंग जड़े जर संग नूप तंग सुरंग सवारे
3: कोट तरंग तरंग से गुगत बाण के।

चौपाई संवत सत्रह सहस्पण सदी अष्टमी चित्रोपख्या चरित्रे मंत्री भू संवादे का खासा।

0: आनंद राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया
1: सतगुरता पाया सहज सिद्धि मन बजी आवा धाइया
0: राग रत्न परवाड़ वरिय शब्द गावड़ी आईया
1: शब्दो तक अब हरि केरा मन जनी वसाया
0: कह नानक ना धोवा सतगुरु में पाया
1: हे मन मेरिया तू सदा रोहन नाले
0: नाल रो तू मन मैं दुख सब सारना
1: अंगीकार कर तेरा कार्य सब सवारना
0: सुनागला सुनो स्वामी

0: कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच माले
1: अगम गोचरा तेरा अंत न पाया
0: अंतो न पाया कि तेरा अपना आप तू जाने
1: जी जन सब के तेरा क्या को आख बखाने
0: आखे तो वेखे सब तू है जिन जगत उपाया
1: कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत न पाया
0: नर मन जान अमृत खोज दे सो अमृत करते पाया
1: पाया अमृत कर कृपा की नी सच्चा मन बसाया
0: जी जन सब तेरे उपाय एक

0: पर सातीश है जो प्रिय और सर्व क्या है
1: जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो होता मैले इतनी जन्म जुआ हारिया
0: इतना बड़ा रोग लगा मन मनो विसारे
1: विदा में ना हूँ तम सो सुने ना ही फिरे जो बिता लिया
0: नानक जिन